0: मेरे बच्चे भूखे, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे, मेरे बच्चे भूखे।
1: समझ गया, समझ गया। गले तो क्या, पांव तक सोना पहनाएंगे लाला अपनी राधा को, भगवान की बात है। चिंता न करो रानी, दयालु का जो हाथ पकड़ेगा वो सदा सुखी रहेगा। सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे। सोने की, राम कसम, लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। आओ
0: राधा के रूप में आते हुए लाज ना आए, मेरे रूप में आई हो तो अपनी लाज लुटते हुए भी देख ली। हंसू नहीं, हंसू नहीं, संसार का भार उठा लो के देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा। मां बनकर देखो,